0: It's 8:30 a.m.
1: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
0: City FM 89.
4: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क Jazz 5G पे. तो अब Jazz 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो. Jazz 5G आपका, मर्जी भी आपकी. Jazz 5G, हमारी सुपर पावर.
5: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
6: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
7: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
6: इसलिए बैंक जाने की क्या जरूरत है? इन्वेस्ट पार्क है ना?
7: इन्वेस्ट पार्क?
8: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
7: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और
9: मुनाफा.
0: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
4: You're listening to City FM 89.
5: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैज 5G, हमारी सुपर पावर.
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
7: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwayein aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa dalein.
8: Is awaaz ne chheen liya hai sukoon. To le aaye Mospel. क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
4: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Prime Video and Sony Pictures are closing in on a series order for a live-action TV project based on Marvel Comics' famous Clone Saga storyline. According to Deadline, the upcoming series will center on Spider-Man clones, Ben Reilly and Kane Parker, as part of Sony's universe of Marvel characters.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
7: City FM
1: 89.
8: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ Jazz 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. Jazz 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, Jazz 5G आपका, मर्जी भी आपकी. Jazz 5G, हमारी सुपर पावर.
9: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन, व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
11: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
3: City FM 89.
1: You're listening to

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
4: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
6: City
7: FM 89.
8: मैं हूं आसिम अजहर और मैं यूज करता हूं जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। अब जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G, हमारी सुपर पावर।

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: You got me going crazy.
3: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
4: City FM 89.
7: Trending today.
8: Prime Video and Sony Pictures are closing in on a series order for a live-action TV project based on Marvel Comics' famous Clone Saga storyline. According to Deadline, the upcoming series will center on Spider-Man clones, Ben Reilly and Kane Parker, as part of Sony's universe of Marvel characters.
4: City FM 89.
9: I'm Asim Azhar, and I use Jazz 5G, Pakistan's biggest and fastest 5G network. अब जो चाहे करो या कुछ ना करो जैस 5G आपका मर्जी भी आपकी जैस 5G हमारी सुपर पावर
10: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड बस बॉटल को स्कैन करो स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन स्किन और किस्मत दोनों चमकाए देखा ना मिरेकल्स हैपन
11: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89
12: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
0: City FM 89.
2: You got me going crazy.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
5: City FM 89.
6: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे। तो अब जैस 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैस 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैस 5G हमारी सुपर पावर।
7: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें।
8: City FM 89, we're playing your song.
9: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
4: City FM 89.
5: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ Jazz 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. Jazz 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो. Jazz 5G आपका, मर्जी भी आपकी. Jazz 5G, हमारी सुपर पावर.
6: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
7: The Rush Hour with ABD.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G हमारी सुपर पावर।
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड, बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
1: City.
4: There are concerts, Karachi, and then there's a Sajjad Ali night under the city sky. Eventis is bringing the ultimate maestro to the City of Lights for the Legacy Tour. And honestly, the nostalgia is going to be off the charts. Whether Cinderella defined your school days or Bolo Bolo is still your top road trip anthem. This is the one concert you cannot afford to miss. Mark it down, Sunday, October 18th in Karachi. City FM 89 is proud to be your official exclusive radio partner. Tickets up on ticketwala.pk.
1: City FM 89,
5: your drive-along companion.
1: You're listening to
6: Future Sounds.
5: Future Sounds.
6: Stay fresh, stay lit.
4: New music drops right here.

0: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे। तो अब जैस 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैस 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैस 5G हमारी सुपर पावर।
1: Hold on, special delivery coming through.
2: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
3: We're now live on WhatsApp.
4: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
3: It's as easy as 03142-898989.
2: Save our number now and WhatsApp us.
5: City FM 89.
3: You're listening to
6: Future Sounds.
5: Future Sounds.
7: Vibe with us, your music.
8: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G हमारी सुपर पावर।
4: एक्सपोज योर सेल्फ टू अ वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। एंड लेट योर वरीज रन फ्री। Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
5: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
0: Don't adjust your dial.
2: This is
6: City FM 89.
0: You're listening to
2: Future Sounds.
6: Future Sounds.
7: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 PM.
1: City FM 89.
3: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे। तो अब जैस 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैस 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैस 5G हमारी सुपर पावर।
4: You're listening to City FM 89.
5: We are playing your song.
1: You're listening to
6: Future Sounds.
7: Future Sounds.
8: Discover 5 new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist. Stay ahead of the vibe.
9: Future.